आकाशवाणी इम्फाल नसी कालेंगी कुनिथोई निपानबा थांगजे निमित सकाब लिसिंग अमग जमापल निफु निपाल मे की तांग मापल इंग कुमजा लिसिंग अनि कुंतरुक हौजिक अयुक की पुंग मंगा मखाई ताखिब लोइनना आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल की अयुक की थौरम संदुक पहुजेरी मीडियम वेव मीटर चहुम निफु दशमिक अमा किलोहर्स जनिपाल मरफुनिथोई द संदुक चरीबा कंगला चैनल ताबिरीबा मयाम पुंग नमकपू सिल्की चनम्बमना तराम नोक चरी इकोक नोना खुरुम चरी।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबीर से लौ सिंगू की वाफम दा नोंजू था ब्रॉयलर यंसिंग सेनबा
1: नोंजु थागि मतमददि सेंदा लंबी मोइना लोइनरिबा ब्रॉयलर यंसिंग लोइबिबि यनबु सिंगसिना यंसिंग अमदि यंगोन मरु होइना यंगोन दा हाबलि बवाई उकुप सिंग याम सेक्सिना लुनाना थंबिबसी याम नमथौताई मसिन यंसिंग सिबगि सांग अदुकि मति खंथाले अइखोगि लमदम सिददि नोंजु था मतमद नों मरांग काइन सुबनिना ह्युमिड सुवै यनबु सिंग सुमसागि सेलनि थिन लैतबनिना यंगोल सिंग सु सेल संगदन साबना यामने मरमसिना यंगोन नमति अकोइबगि फिबम यामने लुनाना थंबिबा महिग मथाई संगनदबसि यामने मथौताई ह्युमिडिटी वांगलग साबगि सांग हंथबसिना लाइना कया सन्दरकलिबा महिग सिंगिदि यामना मसिंग हेंगनबगि यामना अफब एनवायरमेंट अमवेले मरमसिना लाइना कया सिना सिबगि सांग वांगले यनबु सिंगना यंगोनगे अकोइबा मते यंगोन मनुंगद सेक्शन थौरांग कया मलाखटबिबा मथौताई मखोसिंग अदुति यंगोन अमदि अकोइबद लोबिगदब सेक्शन थौरांग सिंग यंगोनदगि मितर मरी मांगा मुके अकोइबद नपी सिंग बि मनाम सिंग असंग मानगे पोलम अमता थंबिरोइदबने अमदि इसिंग तुंगदुना लैब नत्रगा कोंकुक कुम मफम अमता थंबिरोइदबने करिगुंब इसिंग तुंगदुना लैरगदि महिक मयाम अम मसा पुकले अमदि लैना कया म संदोरपगि पंबै अम वेले यंगोनगि साइड वाल सिंग नोंग सुरपो मतमद नोंग हाइजिनदना पोलिथिन सेट अमना मकोनगे अकोइबद खाजिन बिगने नोंग हांगलप मतम पोलिथिन सीट सिंगदु हाइगत पीरगा नोंसित नोंसा संगन बिगदबने नोंजु था मतम ददि तिलकांग हयिंग सांगसी याम नवांगि मसिना लाइना पोहन बगे सोब मसा कम वेले मरम मसिना यंगोन गे अकोइब मते मनुंग द तिलकांग हयिंग सांग हंथनाब दिस इन्फेक्टेंट सीजन बिगदबने मसिना त्रगसु ईएम इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मकोन मनुंग द साइबिरगदि हयिंग मते अतोप तिलकांग गि सांग मते मनम नम थिबगि गि सांग सिसु हंथाली यंगोंद कुब्लिब जिंक नत्रगा अतोप पोलम कया सिजनदन कुप मकोंदगी सुम थरक पै सिंग से निंगथिने योक्सिन बिगने मसी नत्रगना इरम नलाल निंगथिने सेमबिदुना यंगोंदगी लामन पुथोक बिगने यंगोन मनुंग मति येन सिंग द लवी गदब सिसिन थरांग सिंग दे करिगुम नोंग हाइजेन तुन सोट पतारगा दे मदुदेगि लैना कया म खुदम बयना मथि अंगांग बफाइबा मथि अंगौबा असंग बफाइबा तिल सेलकपा सिन सिंग बथोन मंगम महिक मयाम मगे मसिंग यामले करिगुम मतमदसु मकोन मनुंगद नोंग हाइजिलकतुना मकोनदु मपांग मपाक नपसिन्दुन लैब तारगति मकोनद हाबलिब वाइ अनप मपाक मपाक सिंग लौथोक पिरगा अनोब वाइ हाबसिन बिगने करिगुम मतमद सिन्ननब वाइ लैत्रगति सुनु साइबिदुन सय मन ओनथोक ओनसिन तौबिदुना कंगननब मते महिक सिननब ओट बिगने सुनु साइबिब मतमद लेमना सुनु असि खक साइबिरोइदबने खर लुकथरग सुनु साइबिगने मते साइरिंगेद सिन्नमदि नातोन कुपसिन बिगदबने ह्युमिडिटी वांगलगसु टेम्परेचर नेमबनिना यनसिंग इंगदगि तासिन तासिन लैदुन साबगि सांग हंथरकने मति साब तुमदबगि सांग वांगन लैगने असिगुम मतम असिद यंगोन मनुंगद मैसा निंथिन पिदुना यनसिंग लुमन थंबिब मथौ ताय मति अफब मखलगि मसिनजाक पिबिब तंगाइ फदे नोंजुब मतमद यनसिंगद पिथलिबि सिंग यामब फिल्टर तौदबनिना फन लुन उरगसु मै ग्यावगि सांग वांगन लै मरम सेना येनसिंगद पिथलिबि सिंग से निंथिन ट्रीटमेंट तौरग पिथक पिगदबने नोंजु थागि मतमददि ह्युमिडिटी वांगलेब मरम ना येन द पिजगदब मसिनजा कोफाय सुजा काबगि सांगसि वांगले मरम सेना

0: किताबी खोजलना चौं।
1: एडमिशन ओपन कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी उरीबोक्ता क्लास 11 साइंस के एडमिशन होजरे लिसांग सिटन पोजीशन होल्डर्स के आपुठोकरब स्कूल ने हंदक चहिगी ओइनासु 99.8% पास तौबगलोइनना 16 अमसुंग 20 पोजीशन चु लौरकले महिरोइ निफु निपाना 80% गि मथकता पास तौकी एक्सपीरियंस लैरबा ओजासिंग नताकपी तंबिरे लैब लाइब्रेरी स्पोर्ट्स ग्राउंड अमदि अतै फैसिलिटीज मटिक चान लैरब स्कूल ने एल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल

0: ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व

0: के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मोबाइल नंबर 9378120495 व्हाट्सएप की खुटांग यौहन भी खाजीब अमना पाखुम पाखुम अदू एपिसोड पाखुम थाबिरकदबनी।
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अमुक ताबिरसी मणिपुरी फिल्म इसई। मणिपुरी फिल्म इसई की खुदोल की अहानबदा लौबिरसी इमा की सनाथोय फिल्म दगी गुरु सरंग थेमामदी लिंदा थांगजम की अपुनब खोंजलदा एलांगबम इनाउचाने सैरिंगबमदी आर के जितेना सैरंगबैसे खुदोल तमजरी तामिनसी।

रेडियो क्लास समग्र शिक्षा मणिपुर ना क्लास थ्री दिगी क्लास एट फाउगुद तमलीबा महिरोई सिंगी मिमित खुदिंगी तोंगांग तोंगांग द सब्जेक्ट सिंगी दमक रेडियो क्लास संदोकचरी अयुक पुंग तरुक मिनिट निफु अमदी नुंथिल पुंग उहु मिनिट कुंथ्रा मंगा द संदोकचरी बा लेसन सिंगसी संगाई चैनल अमदी आकाशवाणी इम्फाल गे यूट्यूब चा लाइव ओइनसु ताब फंगदिगनी महिरोई कयाना लेसन सिंगी क्विज द सरुक यादुना सेलगी मनासु फंगनख्रे पारासु खंगौबा मनासु फंगबा कानब लहौसी वहांग सिंगी पाखुम पिजरीबा मोबाइल नंबर 9378120495 ता व्हाट्सएप की खुथांगदा योहन बिलौ खंगजिन बिगदबा अमना अदोम की पाखुम अदु वहांग हंगजब नुमित अदुमक्तदा हाइबदी एपिसोड अदु संदोपु नुमित अदुमक्तदा अइखोइदा पाखुम थाबिरकदबनी।

ताबिरे हाइड्रोजम जमुना देवी की खोंजलदा एस के अपान बना सैरेंगबा मतमिसई निंजरुबना इराल ओइरबा।

आकाशवाणी इम्फाल हौजे नुमयुम पुंग तरानीथोय तारी कंगला चैनल की अनीशुभ थौरम परिंग संदोक हौजरी संदोक मीडियम मीटर सहुम निफु दसमिंग किलोहर्स निपान मरीफु निथोय हौजे मणिपुरी नुमयुम की पाव तावीरसी।

0: रेडियो क्लास समग्र शिक्षा मणिपुर ना क्लास थ्री दिगी क्लास एट फाउबुद तमलीब महिरोई सिंगी मिमित खुदिंगी तोंगान तोंगान ब सब्जेक्ट सिंगी दमक रेडियो क्लास संदोकचरी अयुक पुंग तरुक मिनिट निफू अमदी नुंथिल पुंग उहु मिनिट कुंथ्रा मंगा द संदोकचरी बा लेसन सिंगसी संगाई चैनल अमदी आकाशवाणी इम्फाल के यूट्यूब चा लाइव ओइनसु ताब फंगदिगनी महिरोई कयाना लेसन सिंगी क्विज द सरुक यादुना सेल गी मनासु फंगनखरे परासु खंगौबा मनासु फंगबा कानब लहौसी वहांग सिंगी पाखुम पिजरीब मोबाइल नंबर 9378120495 ता व्हाट्सएप की खुथांग दा योहन बिलौ खंगजिन बिगदबा अमना अदोम की पाखुम अदु वहांग हंगजब नुमित अदु मक्तदा हाइबदी एपिसोड अदु संदोपु नुमित अदु मक्तदा अइखोइद पाखुम थाबिरकदबनी
1: ꯁꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯥꯏꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯠ ꯈꯤꯟꯕꯝ ꯍꯤꯃꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯃꯣ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ

시계 루이너리 하여가 시계 마카 따락 받아 나나이 부살 딱시 담비럭 보자 아이붕 오부스 또르브나 나이나 하나 하나 먹다 부 크룸저 일라잉 할리붕 오부스 또르브나 나이나 부 하나 하나 먹다 부 크룸저리 하여가 미대 뿌야기 와리 부따 비리바 아후 워콘제네 시나 따범어 펌들레 비리바 아라뽀넉 부들레리바 할러머니 파이퍼니 포 이신이나 콰이타라 부스 또르브나 나이나 하나 하나 먹다 부 크룸저 तोलबदीना नायनवान सैतम जब नवा ओबना हाय गदब यवान दी हयोद हयरो दब यवान हाखिबा थक्सी के कारण सन की बबू खंग दब नवानी सैतम जरी बनवानी खनबिरी हयग सोइब श्याम अरान श्याम मुक्तबु नक पियो हयर दन तरागी खाद तोलबदीना नायनवान बु हन हन मुक्तबु कुरुम जई सिगे मखा तारक बदला पहिलै सनालै पाक्लम लेनलम दमलम सुय सिगे मनुंग दलेरीबा इबुदो पाखंग बाहायदन लेरी इबुदो मबुक नमालिम ओरि हरग मनम ननुंग थौ ओदि बतु कि तुरिक तु कोंग कुदि मुक्त सनान कुंगुन थिले बै बुदो वसिना ममै सुक्लेन सारि हरग ताय बंग नमु तरि पुसन थ बिरम बै बुदो इबुदो कि मसा तरि ददि मंगा लुवांग कुमन अंगु मोयांग खाबंगान बा सरांगलै सांग थेम हायदन लेरी बै बुदो तरि असिना मिचई पुयागे वारी मोयरांग कंगलाई रोनगे मनुंग दलेरी बा खंबबु समु खोंग खोंग यत पगी मतांग सी सिंगु कनागे मफम द खयुंग कनागे महराने या देसली हरगा ताब फंग दगी खंगमंग गंग दगी हायदना माले मगे मरी सिंगदाईनी पान सी द उरुरुरुरु लेरी हरगे यंग कम तम ददी कम दोड्या मंगांग मुंग दम संगले नसिके लाइनिंग अहली बुंगोगी मग मगाय फम दसली हर गताब फंगगनी खंगबंगम लगनी खलदना मंगांग मुंग दम संगले नगे लाइनिंग अहली बुंगोगी मगाय फम दई बुदा उतरी दसिना मालंग मनुंग सिट की मामांग थारी हर यंग यंग यंग यंग यंग यंग यंग यंग लांग ला इरेगा हाय पु पोयता फाथीबा वंगम हेगम सुंगम लेबा तुंगी मांगी वरी सिमुंग कया बुसु सितनान उंगम लेबै पु ngasi ipu gi nongdom sangle na si dani na suai koi na lak se bade tai thau gi lak pu na ti ipu ipa ipu na thambi ramba adu ngai moyang kanglai ron hai dana kowa misai ipu ya gi lairik adu madu gi manung da khamba bu samu khong yet pa gi mata ang adu madu mukta bu ipu gi mapham na gi tak khang jagi ta jagi hai dana lak se bani ipu वागे यवा फिगे सिग्नले बिउने न सुई कोई खंगजगी पुवदन कुरकुदक संसार लई द कुल्ले हरग खुरुम जर पक्कंग लई निंग थौ याई फाबा बाय म पुनिंग संग न उनबी पुनिंग इन तारो दु नु मुगी कुरु नु मिर याई फुरिन याई फोरब कुरु नु मिर अमदा केगे मोरांग लई पाक असि दोने मोरांग निंग थौ हदन लई बा असि गे मनाउ इबुंगो सिंखु नहा तेले बा वंगो निंग थौ हदन को असि गे म मसीगी ममोम लांगलिन इबे मसक द सुदनिंग थिरबी फजरबी ममोम लांगलिन अमलेरमी हाइब ममोम लांगलिन नसीगी कोलोमिंगलिन नसी थोइबी हाइदन कोइद केगे मोरांग लाई पाक असी सहुन पाली नुआई एबी मोरांग काइन पाली साब थकपा कनागी अवा अपाले तन नुआई एबी मोरांग काइन लमलिन हाइबदु ओरम ममोम लांगलिन इबे मसी मसीगी खनबदा मनाओइबुंगो नमथंग खनबा कयागी मट्टी वाजबगी आहिब मतम दम ममोम लांगले नसिना हयंग युनाक सगई ओन खब मतम मतम मदुदा ममोम लांगले नदु नतरा सा पुसाग सादन सान नबगी दमकता शेनिंग बकया सेप फंगने नबगी दमकत खंजब द वाजरब पंधुम पान खली आइगी इमोम लांगले निबी मसिना नुसिरिबनी हालदना कनागी खुमन मसा लाइरबा नोंगै खंबबु नुसिरिबसी मागी मफम द येंग बदा करी गुम बम तो लख निगाई लेती पलियम पन धौन सु नाव नाकोन नाकोन बिद्रबा सरी नम थांग अहन बम तंग शेट के हब द शेट प फंग द्रबा मागी मरन याय द इमोम लांगले न लेब तार बदी हयंग इमोम लांगले वा ब इम श ओरि गन इमोम लांगले न अहो बम तंग हिक्सा गी द न खलक प मतम द करी बुसा गन य हब द सगी मही लांग न तोरोंग तोरोंग लाउ न सार ग जोरो जोरो हैर ग साबदो मदुनने अहाव एनसां ओइगदोरी मरमसि इमोम लांगले ने सि कनाद थाजबन फगदगि हेना मनाय बुंगो वंगो निं थौ पाइमलुं द खलि आइ अंगुम नों मान कोयाम बसि सक्त येंगे वाते सुदे येंगे वाते लुपा द पैसा द फिजे तले

0: ꯗ ꯃꯔꯤꯒ ꯄꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤꯒ ꯌꯦꯡꯕꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1900 ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯂꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯕꯦꯀꯔꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯄꯨꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯅꯪꯖꯔꯛꯂꯤꯕꯤ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯝꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯏꯪ 1906 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯝꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯀꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯕꯇꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕꯤ ꯃꯦꯔꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯪ 1910 ꯔꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ 1ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯁꯔꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯤꯇꯜ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁ-ꯔꯦꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯤꯡꯁ ꯀꯌꯥ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯂꯝꯕꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕꯤ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯨꯔꯤ ꯏꯪ 1894 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯅꯦꯃꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯨꯔꯤ
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯄꯨꯡ 2:35 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ
2: ꯅꯃꯁꯀꯥꯔ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯂꯕꯂꯤꯟ ꯅꯤꯒꯝ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है।

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।

0: habits and traditions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श

0: किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में पेश है फिल्म संगीत, और आज आप सुनेंगे कुछ नए फिल्मों के गीत। तो पेश है पहला गीत दोस्ताना फिल्म से श्रेया घोषाल, अमानत अली, विशाल ददलानी और राजा हसन की आवाज़ों में। अन्विता दत्त की शब्द रचना है और विशाल शेखर का संगीत।

दोस्तों, हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लाता है। बस अपने पर विश्वास रखना होता है, कठिनाइयों को मुस्कुराकर स्वीकार करना होता है। रेडियो के ज़रिए हम सुनाते हैं ऐसे गीत जो आपको एक मुस्कुराहट दे। आइए अगला गीत सुनते हैं ब्रेक के बाद फिल्म से, विशाल ददलानी और एलिसा मेंडोसा की आवाज़ों में। प्रसून जोशी की शब्द रचना को संगीत दिया विशाल शेखर ने।

सुना जाए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म बधाई दो से, वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ और अमित त्रिवेदी का संगीत।

दोस्तों, एक प्यारा सा गीत अभी आप सुनेंगे तेरे ना लव हो गया फिल्म से, श्रेया घोषाल और आतिफ असलम के युगल स्वर में, प्रिया पांचाल का लिखा हुआ और सचिन जिगर का संगीत।

दोस्तों, ईश्वर ने हमें ज़िंदगी एक ही बार दी है। हमें इसे खुल के जीना है, क्योंकि मरना तो एक दिन हम सभी को ही है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी का हैप्पी एंडिंग करें। आइए सुनते हैं हैप्पी एंडिंग फिल्म का एक गीत अरिजीत सिंह और प्रिया सरैया की आवाज़ों में। गीत प्रिया सरैया के हैं और संगीत सचिन जिगर द्वारा।

समीर अंजान की शब्द रचना और साजिद वाजिद के संगीत में सुना जाए श्रेया घोषाल और शान की आवाज़ों में जय हो फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

फूल्स की थोरम ताविरे आकाशवाणी इम्फाल हौजेक संदोकचेरी चिंगलोलगी सैरोल सैरोलगी अहानबदा ताविरसी जे चांगपी अमदी मपांग सकपा खरम मतम इशे

कावेरी चिंगलों की सैरो आकाशवाणी इम्फाल हौजे मार पाइते अमदी थादौगी थौरम मथंग मथंग ताबा फंबिरगनी।

आकाशवाणी इंफाल चु दिल्ली चो अंगो ताकुरे पोमाइवे शो जहनु आकाश सुलाय कपिशो दो निकल शोरे दो शो तिलहना हिने दोपु खलाय माय हाल लाइव वी आर बियो

आकाश पानी इम्फाल सैटिंग को नई मलें बुदों बुजांग चकू तम्पई सैजान खतों कबई मेतालम तम्पब मई मेदें वे मीटर फाइटम लेते पोन कचरु किलो हस फाइट चल चल कई थारेम को नाइबे सैजान खतों चम आकाश पानी इम्फाल लादको सैजान खतों चम सम तम्पब मई शिवाजी का मई नईके बेंगल को लेरें मैसुना शुभेंदु अधिकारी त बीजेपी चीफ मिनिस्टर सुना से संगी ला कंथे कोलकाता तुम ब्रिगेड पेरेड ग्राउंड को लाप में मूंग को पौ शुभेंदु अधिकारी थे गवर्नर आर एन रवि रुनतान से मेखनी बिन के कम गांगी तों सिंगदिन लारो कने कमुंग हुता तू मेखत कजाउन मिनिस्टर पुने सिंगदिन ला कने सिंगदिन ला मितु मूंग को प्राइम मिनिस्टर पौ नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी तुम प्रेसिडेंट नितिन नवीन यूनियन मिनिस्टर गोय इंडिया रुना सरकार सिंबम स्टेट गोय तो चीफ मिनिस्टर नुन खनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कजाउ न कजन तत्म मई अजू कजाउ कने मणिपुर तों चीफ मिनिस्टर पौ युनाम खेमचान सिंह ने कमू खुट कजाउ पमे तमिलनाडु को टी वी के तो कपी सिंह मई जे जोसे विजय रुन कपी सिंह मई सरकार खत कसे मई लम को सिंह सिंह मई थैंग मंगने बम दी हे सरकार कसेम को आई यू एम एल रुन टी वी के ती मचों थाउ मई लम इंथा कखौरी लुलूंग पटकपीटोंगे मई रे कजाउन सिंगदिन ला मितो मूंग असे लापनी सुरुदू मिता इंथा कंथे मितोंग हु को एक्टर खौरी पोलिटिक्स को गुट कमे विजय रिना कतक सिंह मेम्बर रुन मचों थाउबे सारना दौरानु गवर्नर रे करोना सरुन सरकार कसेम गंसा कपीटोंगे मई दख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एम एल तों कपी सिंह मई प्रोफेसर खादर मुहिदीन रुना सागने कतों पार्टी रुन टी वी के तचों थावे तुम्हें तों चिल तिगुट मे माके लजन काय गोय को तान तान मैं नाइब मई केस गोय कतुम गन खो लोयम खुना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथोरीटी खनी डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेस अथोरीटी रुन चमलांगना असै इम्फाल तों लम्फेल को नाई मई कोर्ट कंप्लेक्स कनी डिस्ट्रिक कोर्ट खुबई नौ नेशनल लोक अदालत लापे खत बेखने चीफ मिनिस्टर पौ युनाम खेमचान सिंह रुना नेशनल लोक अदालत लापब मई खबई नुाई मई इंदा पखंथे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथोरीटी तों बंग खौ डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेस अथोरीटी रुना चमलांगना स्टेट हेतों डिस्ट्रिक कपुम नौ डिस्ट्रिक कोर्ट कंप्लेक्स गोय खौ कमू हई असै लोकथों खुलू खुरना लापत खौ कुमेता मैगू रुना कदौ चामे लारो तुना साकने मई संगठा रुन गगन तीन सामने तामग नाइब मई केस गोयत मितों कदौ चामे लारना लारो पुओ सोशल मीडिया को पत्कुम ललम खत को पौ खेमचा रुन साकने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेस अथोरीटी रुनी असै लोक अदालत लापब मई हई पैने लुंग कथुता खुनाए चलें चंगदाय तमु चनाइबू इम्फाल जिरीबम चांग को सै मान फूमे गरी लेंगू तत् इम्फाल थं तत्कंथे अनी तों जिरीबम चमला मिरुन साकने माल फूमे गरी नुन मुंगलुम को ते पेट्रोल गरी लु चरु डीजल फूमे तमु कनाइबू एल पी जी अखा सिमेंट पदै खनिन बाय मै रमपोत फूमे गरी नुन कजाउ बमे सी मिनिस्टर पयुना खेमचा लुना इरेंगबम रिचु चनु रेन कॉमनवेल्थ गेम्स तु कुमचिने चिचरु बखौ कजाउ कों कपा थाउ खमे खुता थुनकु मि इंदाउ कथे स्कॉटलैंड तों ग्लासगो को

आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल के थौरम ताबिर बुसिंगबु अरुण लाना तरान ओक्चो बगलवेनना मखा सथजरकदवा हयेंगी थामजरीब थौरम सिंह श्योमलपना निंगसिंगजरी निंगसिंगजब असी हेगलोइबगा लानथोकचगनी तोंगान तोंगानब मणिपुरी फिल्म सिंगदगी लखोचब फिल्म इसई सिंह पुंग तरुक मिनट निम्फु थामजरी खोंगंगी थौरम खोंगंगी थौरमगी अहानबद थामजरी थोंग्राम सनातोंबी देवीना सकप खोंगजोम पर्व थौरमगी अरोइबद विज्ञानी की मौद खोई लोबना सेमिलोन हेंगद अकोबगी फिवम गाप हिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रीन फाउंडेशन उरी किंगबम हिमत कुमार उनदरी सा तहजगनी उनदरी साब लाइश्रम बीमो थौरम पुथोप रायचंद चिंथा तोान तोानब मणिपुरी फिल्म सिंह लखोचब फिल्म इसई मखा तहजगनी पुंग तरह मिनट निम्फूमा पुंग निपान महुसागम थमजरी रेडियो लीला रेडियो लीला लानथोचगनी कौन है लीला से अरब सरू लीला सानबीगद हिरणमय कल्चरल अकादमी की लीला कांगबू पुंग निपान मखा सानदोचगनी नहारोल की खोंजल नहारोल की खोंजल तहजगनी रिकॉर्डेड फोनिंग प्रोग्राम थौरम सैसप होक राज राजकुमार उनदुना उनदुना साबा चेपलीना मैस्नाम गीतिका समराय लाटपम पुंग मापन मिनट तराम थोंग्राम सनातोंबी देवीदगी खोंजोम पर्व थमजरी माय पाकलब लौमी तहजगनी पुंग मापन मखाय थौरम थांजिंग थाबदा माय पाकलब लौमी ओइनाम बिष्णुपुरदगी सोयबम निलमनीग उनदुना साबा उनदुनो वारी साबिगदबा मेरीना ओइना थौरम पुथोप रायचंद सिंह था पुंग तरा मयान ताबिरिंगदुना एसएमएस अमदी पोस्टकार्ड की खुथांगद खनबिरकप मणिपुर फिल्म इसई सिंह तहनजगनी हयेंग मेगे तांग तरा इंग्लिसिंग अनिग कुनग तरु कालेनगी कुलहुमदोइनी पानबा नोंमाइजिंग नुमित की अयुकी पुंग मंगा मखाई ताब मतमदा आकाशवाणी इम्फाल की थौरम संदोप होजगनी अयुकी पुंग मंगा मिनट कुंथ्राग तरह थमजरी यकायरोल हयेंगी यकायरोल लेम खुजम अचौबीदगी पेना इमालेवाक खुरुमजब इसई गुलाम अहमद शाह कल्चरल आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट की सैसकलोना सकप इसई लाइसोन इसई यांगनु गोलमयी ब्रजवासी मयूम विद्यानिधि शर्मा थोंग्राम सनाहनबी देवीदगी तहजगनी पुंग तरुक मिनट तरा लौ सिंगूगी वाफमद थमजरी नापी हाटनब थौरंग हिरम की मतंग मोयरांगथेम सोफियादगी मैते इसई तहजगनी पुंग तरुक मिनट तराम मतम इसई थमजरी अयुक पुंग तरुमखाई सैसकप सिंगदी अरिबम श्याम शर्मा चोंगथाम सनातोंबी देवी सिनाम नोदिया चान पुंग तरह थमजरी खोंजल नाचोम हयेंगे नाचोम तहजगनी तोान तोानब सैसकपतम इसई युमलेम्बम गोपी देवी न सकप नो तहजगनी पुंग तरह मिनी निम्फु पुंग तरह मिनी यांखे मंगा तेक्चम गंभीर सिंह खोंब बांसी तहजगनी मणिपुर फिल्म इसई तहजगनी अयुक पुंग मापन गायखो ताखेसी थमजरी हयेंग अयुक पुंग मापन मखाय पुंग तरा संदोचगनी आगामी थौरम हयेंगी आगामी थौरम नोंयाई पोछंगबम येब पुंग अरिबम श्रीकांत शर्मन सकप मतम इसई समरा लाटपम बब्लीदगी खुनुंग इसई सिनाम चनु स्वास्तिकादगी खुनुंग इसई लाइश्रम इमोबन लीब वारी तहजगनी थौरम लानथोपीगदवी ओइनाम इसोरी देवी हयेंग नुंथिल नुमिदुंब पुंग तरानिथोय मिनट तरा चप मतम संदोचगनी रेडियो लीला नाउकोन लीला इब हजारी मयूम रोजी लीला पुथोप माइबम इशाकांत पुथोप तेंबांगब असे मंगलेंब नुपी की थौरम थमजरी सक्तम पुंग मिनट तरा थौरम से हयेंग इंटरनेशनल मदर्स डे मरी लेना अखनना पुथोप थौरम इमा तहजगनी थौरम लानथोपीगदवांगोम इवे अयेपम प्रियोवला थौरम पुथोप थोकचोम रेनुवला

0: मसीन पुरक पसाक तुआ पुसिन लग भू पिजखरी चेहब गोनों याई हयेंगी इनों बसुया गान बदलम लई गामी थियन बचत कनी दोगी मसा छनागा
1: थोंग्राम सना तुम्बी देवी ने सकपा मोइरांग कंगलेई रोलता खमनुन सिंग चनबे की मतांग असी ngasi gi thorum houdok poina ta minare ta ton
2: tajare
1: ngasi gi thorum gi aroi basi di baigyanik oiba moong da khoi loibena selmitlon hengadhan ba madi akoi ba gi phibam ngakpa haiba hiramasi da urikhimbam himat kumar chief executive officer the green foundation ga nanaw go unaduna sa ba wari watai asi mukta minasi
2: phani phani taminasi
1: thorum putok pana raichand ching thamni
2: ohoi
1: ahan mukta da ozawe ko gi thorum sida taram nokchari
3: thagat sari
1: ahan boina oza वैज्ञानिक ओइब मोंग दा खो योपा हाइबसिगि मतांग दा मत उकरम न योक दोरी बनो ममांग ngai दगि चनरक पा खो योपगि मोंग सिदगि कया मुक तोंगान बा हाइब तो हम न कितंग थम बियो जा
3: खो योपसि अखोइ न आ ममांग दगि लाय हक तक तगि तोरे हबि आ अखोइ द हौजि हौजि त फंगि बा फोसिल सिंगि मतुम न यंगतारी सही मिलन निफु गि ममांग दा खोइ गि फोसिल अखोइ फंग बसि द दि खोइ जे आ मैहोरोन दगि खोइ ले रे हाइन हाइब लो बय आ अदुबु हौजि हौजि अखोइना लोइनरीबा खोइसिंगसिदि इपाय पुना तोरुमबा मोंग मखोइना यंगमबा र मखोइना खलमबा मोंग अदुदा तोरि खदम मोइना हारबदा खोइ उपु अमा अनि थमगा उपुदुदा खोइदु मतोमला संगकपा नत्रगना फारुबा हाइबा खोइ उपुदुदा अखोइना मरक मरकत यंगझलगा मदुदि यौबा खोइदुना पुथोरपा खोइसिंगदो लोगा खोइजा अदुम पेनथुगा लैनरमि सिबुनि अखोइना हाना मामांगैदिगि लोइनरपा खोइ खुलोय हाइबेदि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हरिस अदुबु खोइगि कानबा अमसुंग खोइगि तंगाई फदबा मोंगसि अखोइनि सुम खंगनरपदिगि कुमाइन तोरगा खोइदगी हेन साथोक पोथोक फंगदगी हाइबेसे सुम खनरपदगी वैज्ञानिक ओइब मोंगदा खोइ लुबेगी वाफमसे थोलोकतने खुदम मना सही अमदा था ट्राइन थुइलेरि था ट्राइन थुइजे खोइगिदि रितु हाइबदि सीजन जे अहुम थोंगना लेरि अहम बगी सीजन दा खोही पंथा हनी फ्लो सीजन मथंगदा ग्रोथ पेरोट हाइबदि मसा याम पुकनबा अइंगसा सांग नायनबगी सीजन अदुगा अरोइबदा मचिनजाक फंगदबगी पांथा हाइबदी डार्ट सीजन हाइबा असिनी हाइबा रितु सिदा करी

0: संबिरो याम थाजे दे कदम दगिनो सिदे एक तफमियो इतै मबु कनागला के इथनतराबा
1: नय तामुसु यारली
0: तामोदी कदाई दले हौरगे संगमिना रक पयाद्रै तैमा
1: मामानब मगी फोलाई हाइदुना वारी छाना होबने मासुसंग आनिदा थैथैबा
0: तैमा
1: नंगबु युमलोमद लाक्तबबा कुइर माले नय अखैसि उनखिदब याम कुइरेको
0: होय तैमा ऐ ऐखै खुलदुद लाकनिंद्रेदा लाके हाइनासु खंद्रेदा ऐखै खुलगी मी अमतगासु पौ फोंनकिदबसु यामन कुइरे ऐगी मोबाइल नंबर अमा सिंदोखिबदगी फोनसु कनामतगा फोंनकिद्रे अतै लाइदि इतैमा कमदौरी नुङाइदि बनात्रा
1: होय नुङाइदि इतैमा खै याम नुङाइदि थुइ थुइ बो
0: कैदो बो यावरगी इतैमा
1: थुइ थुइ बा नंग बुयुम कैगे पालब्रो
0: इतैमा ऐ युम कैगा पानगे हाइन खनरेदा इमानदी युम पानसिल सेना कन्ना हुदोलमबनि अहिने यादबदुदा इमादो ऐ बुवारो ख्रब माले अमुखन हाइरखिद्रे इमादो ऐगे क्वार्टर सिदा पुन्ना लैमिनर सेना हाइबनि अदुसु इमाने यादि
1: नंगना दुमना युम कै पानदन लैब हाइबसे नुङाइ बहुनदि पांचिनब तौरदना
0: इतैमा तामोदबु ऐसु पुंग तरा माथोइदा एसपी गिदा मीटिंग अमा याउरुगदबनि इतैमा खोइने लाखबिरि सिबु कै लैरगेबा
1: थोइ थोइबा नंग ऐ खुइ मिसनागि पाहुता हरबनत्रा
0: इतैमा वारौ बिनु
1: थोइ थोइबा
0: मागि वारि सि सानरगुम सिदा ऐ मागि मरमदा खंगनिंगबा हाइनिंगबा अमत्त लैत्रे मा इना खुनबा नुङाइ याइफब मतिक चाब नुपामदा लुहोंख्रे नुङाइ ना पानख्रे असिखक्तनि अइना खंगलिब हाइबबो
1: थुइ थुइबा नंगन खंगलिब निंगलिब पुन्नमक तुगि ताइवनब नाक्तनि एकोइ मिसनादो
0: इतैमा अइना मुकसोन हाजरि मागि वारिसि अइङोंदा अमुखन ताहनबिरनु नुंसिरबा अइगे खुंगंदुगा अइगे सुमान मरम ओइरगा लाप्थुं नानखिबनि अइ तसिंग मागि ममिंग फब ताब पांद्रे
1: नंग ऐ कोई खुंगंग दुदा अमुक हन्ना ना सकू किद्रे ऐ सुनंगों दा करी गुंबा वापम अमतंग सिंदो के खन कीवन अदुबो तंजा पंग किदे नंग में इसे मिसना अबु वारो उरी बदो वारो पम थोए अदुबो मिसना की दी मरा लेते ना कोई अनी की मरकता लाली बा मिस सकतो दी ऐ ने अहिने थोइ थोइबा
0: जारी तैमा तोसि
1: नंग सिदि आइगि वारि सिम तंग तावि लुहोंग बदो इसन मिसना दि त सेंग न याज खिदबन आइ खोइन नु पाद द लेनिंग बदगि मागि मपम द ओइ दब वाई कया अम खाइ जिंदु न खोय नि लाप थोंग न बसिन कि बतौरांग ने
0: हाई शिबु तैमा
1: आइन हाई बपुन मक्से अछेंग मनि थोय थोयबा नंग निंग सिंग लिबरा
0: तैमा
1: नोंग म नंग न मा उना बलाक पदो मा इमुंग दले हा इमुंग दले न लै न न खोय अनि उना दनाबा आइन लै ति हाई जिन कि बने
0: तैमा
1: मिस ना न थोल पदि नंग हन्ना पावो येंगलमदना अदुम सत्ख माना इंगोंद करी हैरमी हंगबदा नंग ए साइनोपी अमंगा लुओंग दोरे मदोगे पाव खंगन मलाक पनी हाइन मंगोंद तंखी
0: तैमा
1: वाई सिंगदुना मागे थमोई मस्यत कया थोंग न काईखी कब सुया न कब की
0: तैमा
1: लुओंग बदो यानिंग यानिंग याकी
0: तैमा
1: थोय थोयबा
0: तैमा
1: आइ खोइने नुङाइने लैजनि खलुबदुगि ताइवनबदा नुपादो नुपादो निसाद लैसुरब ओइरंके नुपादु न इसन मिसनाबु मागि नुपिनि आइन खनमंगम खिदे लुहोंग बगे हिंदुदा मा अदुम लैखिद्रे आइ कोइना नुङाइना लैजरसो आइदुना सिनखिबदो मा

खुन नुया अंगांग ना कदाय तनो सिना थना मेबा तरा म थेल को अमत सुथीब फंग देना थुमो उपतन लैरी बोय निंगी साउप अहांग बा दुम उपग लैजरी बोय पंगनिंग दे निंगरे माय वा खनसिदा मुन कुप न थिरु द्रे साक लै त्रे त खनदना दुम लैरे चलगे हाव थुम मयाम लैरंगनी चारंगनी निथौगी मचा सनाय बेमगा ऐ सुसाब यावरुगे खनदन नंगरांग मसिन लैरकबा फुरित फजखरबा फजोम फजखरबा तो फजोम सेसलि प्रिलिसिल जाउखरबा ngabong marak mapun pai bedu koyat thok esal koyang yeng bada phamthak chagai da haiba no khai phaba haibong no tam phaba nori lam leiram me madu thok nok dhare ra ga mana phimalam par ga girigiri ang thoe ra ga mareng da tok thang ka le ra ga nong yai ngang se chum chum kum dharak na

खुदोल की मंगा सुबोना तहानजग दौरीबा इसे से लक्की शन विजयालक्ष्मी लमजुंगी लिंगजेल थोईबी पर्सिया वेलेंटीना अल्विना हेलीबा मरुप सिंह सेना एस एम एस की खुथांग थारकने मरुप सिंह की लाइफम दे हापीरक्रे मथंगदरी सोईदना लाइफम सु हापीरक्नबा कंगंजरी मरुप सिंह खनरक्लीना नुशीबी नुशीमनबई फिल्म दगी एजे मैस नाम पुष्परानी अनी पुनः सकबिनबा दालोम गुरु मयुमना सैरेंगबा दीप सिनामना सैरांगुशी खुदोल तमजरी

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज़, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 14 सेकेंड। तो आप तमाम सुनने वालों को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। आज की शाम हम आपको ऐसे ही मौसिकी के सफर पर लेकर चल रहे हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक नगमे हैं, और पहला नगमा एक ऐसा नगमा है जो आपको हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आज भी सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। दरअसल आज का वो दौर नहीं है, वो दौर था बहुत पुराना, 60-70-80 का वो दशक, जब खतों के जरिए हमारी बातचीत हुआ करती थी। दरअसल ये वो दौर था जब खतों के जरिए बातचीत और एक दूसरे को मिलने और पैगामात पहुंचाने के एक बहुत ही खूबसूरत जज्बों के साथ खतें भेजी जाया करते थे, और एक सिलसिला शुरू होता था बातचीत का उन खतों के जरिए, उन खतों के माध्यम से, और फिर वो सिलसिला मोहब्बत में बदलता था। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा

आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस सफर में, और आज के इस सफर का आगाज करेंगे ऐसे ही खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1968 में आई फिल्म कन्यादान के एक बहुत ही खूबसूरत गीत से, जिसको बहुत ही खूबसूरती से गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और इस गीत को लिखा है नीरज साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा।

फिल्म का ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं इस वक्त आप। और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में बात अब एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि अभिनेत्री हेमा मालिनी के करियर में एक अहम मोड़ भी साबित हुई, और वो फिल्म है 1971 में आई अंदाज। ये फिल्म उनके अभिनय सफर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये वो दौर था जब शमी कपूर साहब का स्टारडम थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उनके शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। ये फिल्म उनके करियर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई और इसमें उनका किरदार भी उनके बाकी रोल से काफी अलग और खास माना जाता है। वहीं राजेश खन्ना साहब की खास मौजूदगी ने इस फिल्म की सफलता में एक अहम किरदार अदा किया। ये फिल्म उनके लगातार 17 हिट फिल्मों के सिलसिले का हिस्सा भी बनी। फिल्म की एक और खास बात ये रही कि अभिनेता अजीत का रोल, जिसमें उन्होंने एक संवेदनशील किरदार निभाया था जो उनके आम किरदारों से बिल्कुल अलग था, जिसको दर्शकों ने भी काफी सराहा। इस फिल्म का एक और सुपरहिट नगमा है, एक बेहद खूबसूरत इस फिल्म का एक नगमा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसको किशोर कुमार साहब ने अपने खास अंदाज में गाया था। इस गाने ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि आज भी जब जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं या जिंदगी की मुश्किलात की बातें होती है तो ये नगमा हमें बहुत ही ढांढस बनाता है, हम सब इसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस गाने के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर के अवार्ड के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकन भी मिला, मगर उनको यह अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन इसी गीत के लिए हसरत जयपुरी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड से नवाजा भी गया था। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं इस वक्त आप, और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1981 में आई फिल्म सिलसिला की। इस फिल्म का निर्माण

निर्माण और निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा साहब ने। खास बात यह है कि यह फिल्म एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी विवाहोत्तर संबंध पर आधारित थी, जो उस दौर में हिंदी सिनेमा के लिए बिल्कुल नया विषय था। इस फिल्म की कास्टिंग भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अमिताभ बच्चन साहब, जया बच्चन और रेखा, इन तीनों को एक साथ लाना अपने आप में बड़ी बात थी। दरअसल उस दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा जी के रिश्ते को लेकर मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही थी, जिसने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया था। यश चोपड़ा साहब ने खुद कहा था कि इन तीनों को कास्ट करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले रेखा और जया बच्चन के रोल के लिए दरअसल परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को चुना गया था, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन साहब के सुझाव पर रेखा और जया को ही फाइनल किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि रेखा जी ने इस फिल्म में अपने कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी खुद डिजाइन की थी। फिल्म की शूटिंग कश्मीर से शुरू होकर विदेश, मुंबई और दिल्ली तक चली। यश चोपड़ा ने मीडिया से दूर रहकर पूरी फिल्म को प्राइवेट तरीके से शूट किया। उन्होंने इसे रियल लाइफ का रियल लाइफ में आना बताया था। यश चोपड़ा साहब का मानना था कि दर्शकों का ध्यान कहानी से ज्यादा विवादों पर चला गया था, जिस वजह से यह फिल्म कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद यश चोपड़ा साहब ने एक इंटरव्यू में इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया था। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में 3 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेशन भी मिले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिल पाया। सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक है जो रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन को मिटाती हुई नजर आती है। इस फिल्म के गीतों को बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शिवहरि साहब ने, और गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर, निदा फाजली और हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गजों ने। देखा एक ख्वाब तो यह सिलसिले हुए जावेद अख्तर साहब का बतौर गीतकार पहला नगमा था। तो आइए जावेद साहब के लिखे उसी पहले गीत को सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म सिलसिला का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हर सिंगार की यह महफिल और हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा 1975 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म से। हम बात कर रहे हैं साल 1975 की एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म की जिसने उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम किया, और वो फिल्म थी राज खोसला साहब के लेखन और निर्देशन में आई फिल्म प्रेम कहानी। इस फिल्म में अपने दौर के बड़े नामचीन सितारे शशि कपूर, राजेश खन्ना और मुमताज मुख्य किरदार में थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से कहानी को और भी खास बना दिया था। इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। और सबसे खास बात, प्रेम कहानी साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक तो रही ही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। एक ऐसी फिल्म की कहानी जो अपने नाम की तरह ही प्यार और इमोशन से भरपूर है। इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा जिसके बोल की नजाकत आपके दिल में उतर जाएगी, जिसको गाया है लता जी और मुकेश साहब ने। इस गीत के नगमा निगार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।
1: बड़े शौक से जाइए छोड़कर मगर सहने गुल...

0: मुकेश साहब और लता जी की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हर सिंगार से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में ठीक 11:10 पर। तब तक के मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक

0: गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnithala and VD

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत यानी सुनहरे दौर के वो नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, तिरकना चाहते हैं उस पर। ये वो नगमे होते हैं जो हमारे दिल के इतने करीब हैं कि जब भी हम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में चले गए हों। और बात जब गोल्डन एरा की होती है तो 1947 या यूं कहें 1940 से लेकर 1960 और 65 के बीच के जो नगमे हैं वो सब हम सब के दिल के बेहद करीब हैं। उन्हीं नगमों में से हम ख़ास तौर से उन नगमों को चुन कर लाए हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, उसके बावजूद ऐसे फिल्में बना गए हमारे बुजुर्गों ने कि हम हमेशा उसको याद करते हैं और ताक़यामत शायद याद करते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला एक बहुत ही खूबसूरत नगमा गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में फिल्म आज़ाद से। यह फिल्म आई थी 1955 में। SMS नायडू के निर्माण और निर्देशन में बनी है फिल्म जिसमें मुख्य किरदार निभाया था दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी, ओम प्रकाश, प्राण, राज मेहरा, रणधीर, अचला सचदेव, शामी और S. नज़ीर वगैरह ने।

इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है श्री रामचंद्र ने। इसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी और उषा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन हीरा का ये वो हीरा जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल के बेहद करीब है।

0: Bile.
1: गोल लेनेरा के उन नगमों की जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। ये वो गीत हैं, ये वो नगमे हैं जो हमारे मनमीत हो गए, और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने पसंदीदा इस प्रोग्राम में। और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म चोरी चोरी से। यह फिल्म आई थी 1956 में। चोरी चोरी एक ऐसी फिल्म जिसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, और इसके निर्देशक हैं अनंत ठाकुर। इस फिल्म के लेखक थे आगा जानी काश्मीरी, और इस फिल्म में मुख्य किरदार जिन लोगों ने निभाया था वो थे नरगिस, राज कपूर साहब, प्राण, गोपी, भगवान, डेविड मुखरी, राज मेहरा और जॉनी वॉकर वगैरह। इन तमाम लोगों के अभिनय से सजी ये फिल्म अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। यह फिल्म जितनी खूबसूरत थी उसके नगमे भी, उसके संगीत भी उतने ही प्यारे थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ख़ास बात यह है कि शंकर जयकिशन साहब को इस फिल्म के संगीत के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के निर्देशन का पुरस्कार भी मिला था। इसी फिल्म का यह नगमा लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहा सिक्त छाँव में हैं और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा की चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग, इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहां है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ तुम में से किस किसने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए, लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक, सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी। तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने। सर सर सर, मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं जैसे प्राण खिंच गए। ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में FIR दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान

0: बचाई है। मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे। आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ।
1: हाँ
0: देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो। पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों भिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत ना होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल। हमने एक घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और तीन बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रहे हैं, मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ। गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों कहां गई दोनों गाड़ियां? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतार कर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली। औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर इस बच्ची को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है, नशे में दुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के दो एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक बार मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में कसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी गंगा क्या अस्पताल में है? मम्मी उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं। गजब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी आज फिर आ गई।

था ने? कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2 सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का स्वर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली, ओ मेरी बिटिया।

अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पल्लों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती एक से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रहे हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ, मैडम जी तो घर में सो रही हैं। वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है और सब दुत्कारते हैं। नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है, जिसकी इतनी ऊंची आवाज है, या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बना

0: देखकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया।
1: कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई?
0: जी, एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ, दरख्वास्त ले लीजिए।
1: ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, हाँ? कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया।
0: कुछ ही देर बाद पालिंगरे की बूढ़ी आया हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुंचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताती वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ तीन लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपड़ासी। एक दिन सात आठ लड़कियां यहां से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालन गृह के दो कर्मचारी जेल में हैं, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती हैं। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालन गृह कैसे चलाती हैं? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस चार दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रहीं, और तुम देखती रहीं अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 करोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेहा का कैसा नाता है जो आत्माओं की तार जोड़ता है। दो अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम, कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे दो बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें दो बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं माँ हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है। गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्नी बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बनेगी। भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संग हूं मैं श्रेयसी, और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में फागुन फिल्म का ये बेहतरीन गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही इंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म 9 2 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात हैं कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है।

और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आँखियाँ दिखाएं तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोक झोंक अटकेलियाँ तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमति फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, बोल सजाए सलील चौधरी के, बोल सजाए शैलेंद्र के और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी, और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताजा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ। फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, जिसके बोल सजाए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुने ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

और यूं ही दोस्तों किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ यूं ही बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक SD बर्मन साहब का।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद ही चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

0: अच्छे हम अकेले
1: ज़ालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम

में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 और सेकंड्स की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघू मैं श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरें और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूं फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाजें हैं और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना, बोल सजाए इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आरडी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूं। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयसी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्द भी अगर आपको ना मिले तो बॉलीवुड की ओर रुख करें और एक से एक बेहतरीन नगमे अपनी एहसासों में पिरोएं और उसे जरूर बयां करें। इसी के साथ अब मैं श्रेयसी यहां लेती हूं आपसे इजाजत, जल्द मिलने के वादे के साथ। लेकिन एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद कार्यक्रम हमराही लेकर फिरोज आलम होंगे आपके साथ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

बशीर बद्र साहब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर ऐसे ही जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और प्यार और मोहब्बत ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर आता है जो आपको सचमुच पागल सा बना देता है, पागल सा कर देता है, और यही मोहब्बत की पहली निशानी होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:12 और 5 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस वक्त में आप किसी सफर पे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं, इन सब के बावजूद संगीत, म्यूजिक, मौसीकी एक ऐसा साथी होता है जो हर वक्त आपको सुकून पहुंचाता है और उस दुनिया में लेकर जाता है जहां पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर आप प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। जिंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी इन तमाम मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीजों से मिलकर ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, तो फिर ज़िंदगी की खुशियों का और ज़िंदगी की तकलीफ़ों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर ज़िंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफ़र की बात। प्यार, मोहब्बत, जब तक हमारी ज़िंदगी में प्यार ना हो तो ये ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

लता जी और किशोर कुमार साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म आ गले लग जा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। गीतों के नगमों के ये वो नगमे हैं जो हमेशा हम सब सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं हमराही की इस महफिल में और हमराही में उन नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, वो युगल गीत जो सदाबहार रहे और हमेशा हमारे दिल में बस गए। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। हमराही में अब अगला नगमा एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और

मैं न भूलूंगा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हमसफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह बनता है, यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है, या आप उसे चाहते हैं, या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए। फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में। शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं, या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं, और याद करके आप उसे दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। लेकिन अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला यह नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारी रात हम।

हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। फिल्म अगर तुम न होते से नगमा।

लता जी की आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब याद किसी की आती है और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। तो ये सफर कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म आंधी से, लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए ये नगमा खास तौर से।

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूँगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल है। कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगें जमा होती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है, बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं। और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है। और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो, तो यकीन मानिए दिल की उमंगें तो जमा होंगी ही होंगी और फिर जिंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। आवाज है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से।

पे गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

दिल की उमंगे हैं जवा, बेहद खूबसूरत है नगमा। मुनीम जी फिल्म से हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, यकीनन ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा मजाहिया टाइप का ये नगमा यकीनन कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो खामोशियां हैं, हमारे दिल में जो कुछ गुबार है, हमारे दिल में जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, उसको दूर करता हुआ यह नगमा दिल की उमंगे हैं जवा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया भी गया है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल है अरुणिमा की, और अरुणिमा में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, और वो नगमा है फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, यानी अगर जब आपके साथ कोई आपका अपना हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, तो वो थाम लेगा, और अगर वो कहीं पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं या राह भटकते हैं, तो आप उसे थाम लेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है, और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपका अपना कोई हम सफ़र हो, तब पता चलती है ये बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्ज़ों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सफर के साथ साथ इस सफर को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से। आवाजें हैं मुकेश साहब और शारदा की।

प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की यह महफिल। जावेद नसीमी के

कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर साथ आपके चलता है तो फिर सफ़र भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफ़र आसान होता है तो वो और ज़्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा ये सफ़र कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज फिल्म का यह नगमा महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, इस नगमे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका हमराही, आपका हम कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, और कुछ पल जिंदगी में सुकून के भी चाहिए होते हैं। अगर वो सुकून आपके जिंदगी में है तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल इस बेहद खूबसूरत कलाम की तरफ, और ये गजल है फिल्म मौसम से, लता जी और भूपेंद्र साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये नज़्म बेहद प्यारी, बेहद खूबसूरत, जरूर पसंद आएगी आपको।

0: لتا جی اور بھوپیندر سنگھ کی نئی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ارونیما سے, لیکن سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم کوڈ چینل. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار میں پھر رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपये की हैं. श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे. वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे. ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे. दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ. राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे. उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है. तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया. हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे. कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्म हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे. पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी. सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया. अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं. अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है. आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtania,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में